ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म।

ओम श्री नरेन भगवान की जय। श्री देवपुरीषा महादेव की जय। श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमस्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: ओम श्री नरेन्द्र भगवान
1: की जय।
0: श्री मानगीलाल जी
1: की जय।
2: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: श्री दीपनर भगवान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुषा महादेवा की जय। नरम समरथ स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्री आतरपुरी जी महाराज की जय।

0: श्रीदीपनारायण भगवान की जय।
1: श्री दीपनारायण भगवान की जय। स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीषा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: ಭಕ್ತಂ ನಿತ್ಯದಾಯಂತೆ ಯೋನ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. अनंत ब्राह्मण की रचयिता सृष्टि की पालन करता घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन. आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत. धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए. ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य अच्छा कर्म यहां लेके आया है. ब्लेसेड सेल्फ ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड. The blessing is coming to you from Holy Bharat, beautiful, colorful Rajasthan, pink city, Jaipur ke Jodhpur?
1: Jaipur.
0: Welcome. Today's subject is the Nad Yoga. Vedas say Nad Rupa Parabrahma. Veda mein kaha gaya hai ki Nad Rupa Parabrahma. Agar Parabrahma Pramatma ko dekhna hai ki wo kaise hai, to unka aur koi shavroop nahi hai, keval Nad. The vibration, the resonance, Anant Brahmanda, Sastra Suryas, thousands and thousands of sun systems, endless stars and moons, all is created out of the one, the sound. Shunyakash, पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है बताया है. यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्रह्मांड ये जो 7 लोक बताए गए हैं इनके परे 2100 सूर्य मंडल हैं वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है. उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा. 14 लोक 2100 ब्रह्मांड, द 14 डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड 2100 सन सिस्टम्स अबव दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी कैन एक्सपांड एंड टिल दैट द अवेयरनेस ऑफ इन दैट कॉन्शियसनेस कैन रीच एंड कम बैक and give the knowledge to us. Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, That is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharati Yogi Muni Rishi Muniyo ki Sakti aur Gyan. Aur wo jo kaha gaya hai ki evidence will never die. Koshish karte hain log. Hamara dhan churane ki koshish to karte hain. Lekin wo unke pet mein pachta nahi hai. All this, that time called the Shunyakas, a void, dark, blue space, nothing is inside, nothing. There, again, Shastra said, Veda said, Ekoham Bahusyami, I am one, and now I will multiply myself. क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा। That time, in endless there, awake is Purna, a vibration, a resonance, that's called the sound. And that sound we call Om, Akar, Ukar, Makar. Through that resonance, whatever is visible in this universe, whatever is invisible but you can feel in that, all is created by that one bindu, one akar. Nad bindu kala. Nad bindu, us bindu se shuruat hoti hai. Vah bindu abhi tak hai. Jis samay aap maa ke garbh mein pravesh karte ho, us samay sabse pehla ek bindu kendra banta hai, wo hamari nabhi hai. और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं। लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य।

Creator and Vishnu is the protector and Shiva is the liberator. Not a distractor. Distractor. तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वो ही कमल है, और वो ही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, उस अनंत मां अंदर अनंत है। उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मात्री देवो भवा, वो ही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर वेदा सेड यथा ब्राह्मणे तथा पिंडे, जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है। हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के हैं, उसके अंदर में नाद है। वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है, या डॉक्टर साहब बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, उसने रॉन्ग मत बोलना, एक मिनट में 5 लीटर खून का दौड़ा करता कराता है हमारा ये हार्ट। ओ तो 24 घंटे में कितना होगा भाई, पड़ियोड़ा मैं बताओ, मैं तो पड़ियोड़ी को नहीं हूं। उस हार्ट का आपने कभी ध्यान रखा, कभी आपने हार्ट को कहा कि आप कैसे हो, आपको कैसा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं जिससे आप मजबूत और खुश रहो? हम हमारी जीवा के मुंह के स्वाद के कारण हमारे कोई शरीर के अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो, मामला पूरा। तो अरे उसको विश्राम के लिए नहीं, तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे 4 वेदों के अंदर एक और 5वां वेद है जिसका क्या नाम है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है नाद योग है, और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट हुई है मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, जब तक नहीं होता नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज वन स्मॉल स्टोरी। गॉड हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। भगवान के बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे। अर्ली मॉर्निंग गॉड गेट अप एंड वॉक थ्रू द गार्डन एंड ही टचेज ईच एंड एवरी ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड ऑल, जितने भी वनस्पति हैं भगवान उनके हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं, और जितने भी पौध हैं, जितने पौधे हैं, जड़ी बूटिये हैं, वृक्ष हैं, सभी भगवान को कहते हैं गॉड आई लव यू, गॉड आई लव, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माय डियर आई लव यू, आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं।

तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी है। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माई डियर बंबू आई लव यू ऑल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में खींचेगा और आग होगी सबको जला देगा। बांस के अंदर तीन अवगुण है। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है। एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है। वो कड़ापन यानी अपना अहंकार। ज्यो पद बढ़ता है तो मद भी बढ़ता है। ऐसे जो बड़ा हो गया, हमारे समाज में अगर कोई बड़ा अफसर बन गया और कोई हमारे समाज का कोई गरीब जाएगा कि साहब माने कोई नौकरी है, बाद में फिर बात करेंगे, अरे भाई सहायता तो कर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके लिए, जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन रही चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे, सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए, संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है। संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना, कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दे रहा, ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। लोग आ गए अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ, तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, तहां दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए। वो संत की पहचान होती है, चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है, और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर को जाने, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा, समझ वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा क्या कहीं। और जहां बहने हैं, माताएं हैं, घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता जल पिलाएंगे कुछ ताके, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे, तो कहीं दारू पाए तो कहीं सही बात है कि नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लगे।

ये अति दूर, उसका कड़कापणा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है कि नहीं, अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है कि नहीं, बांस में कपट की गांठ, बीच में है पोल, और अगर उसको कहे तो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा, अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो जब वो बांस अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है, घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे, बांस होगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हो वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी रक्षा हो जाती है, यहां पेड़ नहीं काटना यहां चंदन उग रहा है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को शक्ति संत और शूर, और तीन लजावट देश को कपटी कायर और करूर। बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं, क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है, हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है, साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते कि ये बांस, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है। एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे,
बांस का कर...

चले जा, जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बास कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे चल के क्यों रखे हो? भगवान कहते हैं कि बास आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बास रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे? कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो? भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं। कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा, तो मुझे और समझाइए मैं कैसे करूंगा। मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म, वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली वाद्य जो है हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बांसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। काट दिया, बांसुरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे। बांस ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है, भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो? कि बेटा, आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा। मैंने क्या पाप किया? मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में, आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो अब आज कहता क्यों क्या करोगे? कि तेरा जो गोड है वो काट दूंगा। अच्छा, मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है? कि बेटा, ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी, बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं, वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उससे? हाँ बेटा, ये तेरा इतना ज्यादा गोड है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा। तो बांस को कितना ही पानी में रखो वो खराब नहीं होता है, तो वो प्राण रूपी जल हमें वापस पिलाता है। तो ये बांसुरी नाद योग,
नाद।

0: रूप पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का स्वरूप का लेकिन हर एक की बात नहीं है। ये बांसुरी क्या छोटा सा ये लकड़ी है, छोटा सा डंडा है, मने देओ तो मैं तो करूं मां टूट टू गए, हां बाबूजी बहुत बढ़िया बनाए रेवा दबे गणो। लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगाता है तो बांसुरी भी खुश होती है, यहां अब भगवान मेरे से प्यार कर रहे हैं और भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं। हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी परब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्न, बोलो इंद्र को भी दान दे दे वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास, मेरे रत्नु बहुत चिले। हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा, रत्नों की खान में रत्न निकलता है ना। सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टुडे, आई स्पोक अबाउट नाद योगा and the story many of you know, often I used to tell about the bamboo and the creation of the flute, meaning of the sound and the artist. The artist is a master. Karat karat abhyas pyare jadmat hot sujan, rassi ki avat javat silpar padat nishan. So practice makes perfect. Abhyasa abhyasa kaunte abhyasa. हे अर्जुन, हे कौंती के पुत्र, सन ऑफ द कौंती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स, बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया, योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए कहा है, गुरुदेव बिना कार्य न सरे, कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तेरे, गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे। तो वही बांसुरी, वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले, युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुई, वो आज भी हमारे साथ में है। उसको ही पहचानना, भगवान को ही पहचानना है। तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको, ही विल प्ले फॉर अस ए फ्लूट एंड दिस फ्लूट इज दैट वन विच वॉज मेड ओरिजिनली बाय मैनी मैनी युगास एगो। बोल श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, ओम शांति शांति।
1: एक लाइन
0: बोलो, 10 लाइन।
1: First of all, I wish
0: floor is yours. उधर थोड़ा उठने मुंडो कर दो।
1: All of the world.
0: कैमरा की तरफ।
1: I wish to thank a millions of times to Swamiji for first of all so profoundly analyzing the creator.

0: ऐसी राग थी
1: ये कोई सारंग राग
0: क्या कोई गीत था
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत छोटी छोटी गईया छोटे छोटे श्री कृष्ण
0: चारण राग है चारण राग
1: नहीं चारण नहीं था सारंग
0: अच्छा सारण
1: सारंग
0: समय कि आप चारण हो इसलिए
1: नहीं नहीं चारण कोई राग
0: अच्छा
1: सारंग राग
0: एक और कोई राग बताओ एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands because
1: it was based on rag sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna which says choti choti gaiya chote chote gwal the small cows and so are the cowherds gwale छोटे से हमारे मदन गोपाल सो लॉर्ड कृष्णा टू इज अ स्मॉल पर्सन सिमिलरली सेज दैट घास खाए गईया द काउज ग्रेज ग्रास घास खाए गईया और दूध पिए ग्वाल एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल
0: नेक्स्ट राग कौन सी है क्या गाओगे बताओ
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा नहीं, नहीं।, नहीं पहले बताना बड़ा कठिन है

0: चाहूं और आग निकल ही नहीं पाती, फिर भी ये भैरवी, भैरवी को टच करेगी, भैरवी। अब भजन कुछ नहीं है बहन जी, इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं, सही बात। हाँ ऐसे ही
1: चिराग, चलो
0: भैरवी को टच कर, कोई गीत नहीं है ऐसे ही।
1: हाँ भैरव जी को बुलाओ, काले भैरव दौड़ो,
0: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, उस पे आ जाऊंगा फाइनली।

ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म उसमें श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मुहूर्त पूजा मूलम गुरुपदम मूलम गुरुवाक्यम मूलम ओम शांति परब्रह्म

0: creatures. Nowhere was in the world, not even the Vedas, not the Bhagavad Gita, no Ramayans, this one what we have. But it was the time of the Bhagwan Ram, God Ram. What you are chanting according to the Hare Krishna movement, very nice, very good. But they do not worship the Rama. They say it is semi-god. My dear, God is not a semi. We are also God. You are the Supreme, but only we have that qualities, or there are some karmic, etc. We will come sometimes to talk. What they are singing, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama is that one that is called the Bhagavan Krishna elder brother. Kaun tha?
1: Balram.
0: So they don't say Balram, they say Ram only. Hare Rama, Hare beginning also, like Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. So they means, of course, the God Krishna is an incarnation, and his brother is also holy, there is nothing to do. But why we, ourselves, making dualities? So God Rama is that Dasarath Putra Rama. उसको तो कहते नहीं सैमी गॉड है भाई ना लग के हम सीता को पूछते हैं न राम को पूछते हैं न दूसरों को और हमारे भारतीय दूसरे बैठे उनको तो कहने की जरूरत नहीं है मैं अपने आप को समटाइम्स देर आर वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज डिफरेंट एंड सिटिंग मैनी इंडियंस दे विल अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज डिफरेंट So, हम लोग जो हैं बड़े भाविक हैं इसी में हम चलते हम खोटे गए ठोके गए क्या कहते हैं हम उसमें फंस गए और इसी तरह जब बढ़िया से मसाला इतना बढ़िया मिल गया है कि पता ही नहीं है कि वो खाया है कि वो खाया है Anyhow, let's go further. So Bhagwan Ram se pehle, Bhagwan Ram, it was about nearly 200,000 years. 2,03,000, so Bhagwan Ram ka avatar, और उसका किनका हनुमान जी का चलो चाहे आप 1,000 वर्ष भी मान लो तो भी तो बहुत हड़ा है ना हजार एक लाख सॉरी हजार ही तो बहुत कम होता है दैट टाइम वॉज ए ग्रेट सेंट आफ्टर ही गॉट द मेडिटेशन एंड ही बिकेम ए होली अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो लाइक ए Pandit. Though had that become Balmiki Ramayana. The Maharishi?
1: Balmiki.
0: Balmiki was Trikardarshi. He knew from where God Rama's incarnation is coming, where, what, when, and his father, Dasarath,

0: किम तत किम
1: सनातन द क्लाउड्स इज सनातन एवरी कर्म नाउ इन दिस कली युग कैन मैन डेवलप वी कैन डेवलप मेनी मेनी धर्म सो युधा बुद्धिस्ट बुधा इज हिंदू हिंदू धर्म एंड बुधा नेवर नेवर ईट एनीथिंग फिश और मीट और दिस एंड बुधा हैड मेडिटेशन एंड ही वॉज गोइंग फॉर भिक्षा भिक्षुक कहते हैं इनको लुकिंग दैट आई एम नॉट स्टेपिंग ऑन एनी एंड जीवन दैट्स गॉन सो इन माय बट धर्म कैम वेरी गुड दैट इज नथिंग रॉन्ग क्रिश्चियनिटी कैम बुद्धिस्ट अलग से आ गए सिख अलग से आ गए और आ गए मुस्लिम्स आ गए वेरी गुड बट देर आर उसमें डुअलिटी आ गई एंड इन डुअलिटी वी बिगिन टू से माई मदर इज द बेस्ट अदर सेड नो माई मदर इज द बेस्ट बट हु विल से माई मदर इज नॉट गुड दिस इज व्हाट हैपन डे बिफोर यस्टरडे Yesterday was it? What happened to here? Unbelievable. A human, doesn't matter from which religion you are, it should not be done. But this is the fighting because they did not understand the religions or caste, etc., etc., my country, your country. So they must know why, from what. They have their reason. But they will not do like this. I don't want to go further. But we pray for that. God bless them. And even them also I pray for them. God give you good thoughts. And please don't do such things. We pray for everybody. This is number one. Number two. The Omkar Bindu Sayuktam Nityadhyayanti Yogina. सब योगी महापुरुष सभी ओम ही इज द साउंड है नाइदर इज धर्मा दिस रिलीजन्स ओनली साउंड एंड नाभि इन द नाभि योगा 52 अल्फाबेट और लेटर्स ऑफ द संस्कृत एंड दे ऑल आर इन द नेवल आवर क्रिएशन इज फ्रॉम द नेवल आवर चक्रास विच आई हैड Perhaps one day I will go. Either this I forgot to look at.